देख तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे। सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

हर आपे झगर चुकावै, हर आपे पंच तत् बिस्थारा, विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मिले आपे, हर आपे झगर चुकावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जान की, अपना गुण ना गवावै। सत सौ उन्नी अंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

कोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देदा दे लैदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाहे खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहु नानक विदसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए भाखिया भाव अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार था प्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणि निदान गाविया सुनिया मन रखिया भाव दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन भाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर के सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लोह पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया सासत सिमरित वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सारा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मोह चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पथ सिउ प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए
मन्नै पावहि मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक भवहि न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोहे दार राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करै विचार, करते काय करनै नाहि सुमार, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, धवलै उपर केता भार, धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया उड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तेस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश माल पाख खाहे, असंख निंदक सिर करहै भार, नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लू, असंख कह है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विन नावै नाही को थाओ, कुदरत कमन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिया हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उत्तर सो खेह, मूत पलीते कपड़ होए, दे साबून लईऐ ओह धोए, भरिऐ मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माहो, कवन जित हुआ आकार, वेल ना पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान, थित वार ना जोगी जाने रुत माहो, ना कोई जा करता सिर ठीकाओ, साजे आपे जाने सोई, केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाना, वड्डा साहिब वड्डी नाई,
ਪੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੈ ਗਇਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ ਅਠਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਾ ਲਾਹੇ ਏਤੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵੀਸਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕਿਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟਹਿ ਵੇਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਾਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖਹਿ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾ ਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ, ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿੱਧ, ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ, ਆਖਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀ ਅਨ, ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾਕਾਰ, ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੋ, ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵੀ ਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸ

ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ
अजन्म है, अवरण है, अपूत है, अपरण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निरलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौने, नमो सर्व पौने, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो निरत निरते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तंग इसनानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंतर जंतरंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी शांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग पर्यात शांद, अगाधे अबाधे अनंदे स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं परमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृसं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी, चरपट शांद त्वय प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुवाल छांद त्वय प्रसाद, आदरूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक
ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ ਜਤਰ ਤਤਰ ਬਿਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰੇ ਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਆਦਿ ਅਸੇਖ ਦੇਸ ਔਰ ਨਾ ਭੇਸ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰਾਗ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਿਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂ ਨਹ ਜਾਹੇ ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨ ਤਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨਈ ਕਿਹ ਜੇਬ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚੱਤਰ ਚੱਕ ਮਾਨ ਹੀ ਪੁਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਚਾਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪਈ ਜਿਹ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਬਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸੋਯੰ ਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਣ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨਿਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਬਹੁ ਚਿੱਤ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਗਣ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੁ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਅਭ ਅਭੰਗ ਗਤਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਗਣ ਉਦਾਰ ਮੁਨ ਗਣ ਪਰਨਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਅਲਿਸਿਆ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸਿਆ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਭਾਰ ਨਾਢੈ ਅਨ ਡੰਡ ਬਾਢੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰਗ ਕਰਿਯੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਪੂਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਭਰਮੰ ਨਾ ਪਿੱਤਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰ ਨਾ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰ ਅਜਾਏ ਨਾ ਚਿੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੈ ਪ੍ਰਥੀਸੈ ਅਧੀਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਅਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕਿ ਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕਿ ਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿ ਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ ਕਿ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸੋਕ ਬਰਨੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਪਰਨੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੈ ਕਿ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰ ਬਿਹੀਨੈ ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾਕੈ ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾਕੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ
के अफवल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर मान्या के सर्वतर दान्या के सर्वतर गौना के सर्वतर भावना के सर्वतर देसाय के सर्वतर भेसाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर साजाय के सर्वतर दीनाय के सर्वतर लीनाय के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर भेसाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजय के सर्वतर राजय के सर्वतर सोखय के सर्वतर पोखय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसय के सर्वतर पेशय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भानय के सर्वतर मानय के सर्वतर इंद्रय के सर्वतर चंद्रय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजूह हैं तमामुल रजूह हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है किनरकं परनास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्तार सावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोतरै ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
हमेसुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चराग है, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के रुजी देहांद है, के राज कर हिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकान है, हिरासुल फिकान है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रिजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं परनास है, बहेस्तुल निवास है, के सरबुल गवान है, हमेसुल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेसुल अलेख है, हमेसुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो बेभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मद भार छंद त्वय प्रसाद, मन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, अर बर अगंज, हर नर परपंज, अन गण प्रणाम, मन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जाल थल मुदाम, अन छिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जाल थल अमंड, दिस विस अपंड, जाल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित धर तुरास, आ जान बाहु, एकैस दाहु, ओ अंकार आदि, कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम, चित चरण नाम, अन छिज गात, आजिज ना बात, अन झंज गात, अन रंज बात, अन तुट भंडार, अन थट अपार, आडीठ धर्म, अत ढीठ कर्म, अन बरन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ब उबारण है, त्रित के धरण है, जग के कारण है, मन मानिया है, जग जानिया है, सर्बं पर है, सर्बंकर है, सर्ब पास्या है, सर्ब नास्या है, करुणाकर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खाल खंडस है, पारते पार है, करुणाकार है, अजपा जाप है, अथपा थाप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी तृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खल कायक है, विश्वंग पर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्ब पायक है, भव भंजन है, अर गंजन है, रिपतापन है, जाप जापन है, अकलंग कृत है, सर्बा कृत है, कर्ता कार है, हरता हर है, परमात्म है, सर्ब आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पूजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे,
त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी क्रीमुल पुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्तर चक्रवर्ते चत्तर चक्र पुगते स्वयं पाव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहिब दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिदान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरांग सवारे कोट तुरांग कुरांग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसिखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो बिचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब सिरे सब को सिरे नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपैंगे जीव जिते जाल मै थाल मै पाल ही पाल मै सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपैंगे मानव इंदर गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करैंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरैंगे
ब्रह्म महेसर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहौ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पातशाही दसवें कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै कर तारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कवाज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहै प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास ने वरिया हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुज जू करियाहो रक्षा राख लेहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सेव कियो बेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कबहूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जित बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनाद असंभ
ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपुनी बुद्ध है जिति बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेति तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतभुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरे सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारहो ताके ताप तनक मह हरहो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाह छुबै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभ राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख नांत सह व्यापत कोई अडिल सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सत्तर है सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भादरव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया
राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो ता गावहु हरि के रामन जिनि वसाया कह नानक आनंद हुआ सत गुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया धुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह तुटा तिन का शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या कर है वेचारिया एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै आवहु संत प्यारिहो अकथ की करहै कहानी अकथ केरी केत दुवारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर काओ हुकम मन्या पाईऐ हुकम मन्हो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संत हो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले एहो कुटंब तुझे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए
ऐसा काम मूले ना कीचै, जित अंत पछोताइयै। सत गुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरा नाले। कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा। अपना आप तू जान हे, जी जंत सब खेल तेरा। क्या को आख वखान ए, आख है ता वेख है सब तू है। जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है। तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे। सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी। सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाए। एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका। सत गुरु भला पाया, कह नानक जिसनो आप तुठा। तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली। चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत ना ही बोलना। खन्या हो तिखी वाल हुनकी, ए तो मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया, हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हे तिव चलह, जिन्ना मार्ग पाव हे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुर द्वारा सुख पाव हे। कह नानक सच्चे साहिब, ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला। सत गुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वस्या। जिन तुरहो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे। कर है गल्ला गली किने ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला। सत गुरु सुनाया, पवित होए से जना। जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो। पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित। से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित। जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै। बिन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संजम। रहे कर्म कमाए, सहसै जियो मलीन है। कित संजम धोता जाए, मन धोवहो शब्द लागहो। हर स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी। सहज उपजै एह सहसा इव जाए। जियाहो मैले बहरहु निर्मल, बहरहु निर्मल जियाहो ता मैले। तिनी जन्म जुवै हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनहु विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम। सो सुनहै नाही, फिर है ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जियाहो निर्मल बहरहु निर्मल, बहरहु ता निर्मल जियाहो निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ की सोए पहुंचै नाही। मनसा सच समानी, जन्म रतन जिनी खटिया। भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल। सदा रह है गुर नाले, जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै। होवै ता सनमुख सिख कोई, जी अहो रह गुर नाले।
गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रह परनै गुर बिन अवर न जानै कोए। कहे नानक सुनहु संतहु सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई। पुछो हो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखा हो बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची। सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछू ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कहे नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलया सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकत आप उपाय कै करता। आपे हुकम वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस सिव लिवलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तेहे गुणे संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया। बोल है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए। जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारियै। मनहु क्यों विसारियै एवड दाता जे अगन मह आहार पहुचावै। ओसनो केहो पोहे ना सकी जिस नाओ अपनी लिव लावै। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालियै। कहे नानक एवड दाता सो क्यों मनहु विसारियै। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही। करतै खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया। परवार भला पाया लिव छुड़के लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए। किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपियै विच हो आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै
हर वसै मन आए हर आप अमुलक है। भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जिया हो लाहा खटे हो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी।

सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापय। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए, कै क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया, सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नित रहो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी। हर बिन अवर ना देखो हो कोई, हर बिन अवर ना देखो हो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है। हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से। सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो। साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनहो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ। रसना रस समाणी,

सुनहो पवित्र हो वहो साचै सुन नैनो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारै लाए भावनी इक ना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नाव निद तेसदा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहेला साचा घर गावहो, गावहो ता सोहेला घर साचा, जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव है जा तुद भाव है, गुरमुख जिन्ना बुझ

हे एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जान पाव हे कह नानक सच सोहला सच्चै घर गाव हे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वे सूरे।

सुरे सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निद आवै ताए सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनदिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निबाही तिना समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतहै बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी
1: वाहे गुरु।
0: बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे

सगल गुणा के दाते स्वामी बिनाओ सुनहो एक दीना देहो दर्स नानक बलिहारी जियाड़ा बाल बाल कीना आस प्यासी पिर कैताई ज्यो चातरिक बूंदेरे कहु नानक जियड़ा बलिहारी देहो दर्स प्रभ मेरे अम्य दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नाव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो।

सत्संग जी अंतर्गत होके दो तीन मिनट वास्ते अपने नाम नु सुनना करना जियो नाम चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है जिथे भी आप जी के मन का टिकाव बनता है नाम सुनता उत्थे आप जी सुन सकते हो जिन्हां गुरमुखां नू अजे नाम नहीं सुनता उन्होंने सास ग्रास सिमरन विच ध्यान रखना जीओ श्वास अंदर नू जांदा इनहेल वाहे फील करना श्वास बाहर नू आंदा एक्सहेल गुरु फील करना वाहे गुरु। इस तरह अंतर्गत सिमरन विच ध्यान रखना जीओ श्वासां दे नाल जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्होंने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लैके जाना जीओ कृपा करके नेत्र बंद रखने आ विचारां तों रहित हो के आपने मन नूं नाम सुन विच लाउणा जीओ

मथे टिका तिड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश धान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किस न जाना।

अनहद शब्द उठे धुनकारा, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, पूछत पथक तेह मार्ग न धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन सकै जाइए।

जिन जग थाप बताया जालो सो साहिब परवानो बाबा आया है उठ चलना अध पंदे है संसारू वा सिर सिर सचड़े लिखिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए पुठियां खल्लां लोहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग निभाही ते ना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आ रियायत देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये खालसा जी के बोल बाले बोलो जी बख्शो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे पवित्र यात्रा अते दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जी तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल जी का दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाण्यो के माण नेताण्यो के ताण न्योट्यो की ओट सचे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सच्चे पातशाह आप जियां दी बख्शिश कीती होई समय ते स्वासां रूपी पूंजी नूं भोगदियां होया भाई सरबजीत सिंह जी सिद्धू जो पिछले दिनी अकाल चलाणा कर गए संतना दे मृतक शरीर नूं अग्न भेंट करन तो परंत आप जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच अलाहणियां दे पाठ होए हन पिछले दिनी प्रारंभ होए श्री सहज पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए हन रामकली साध जी के पाठ गुरबाणी कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास है जी समुचियां ही सेवावां निभाउंदियां गुरबाणी पढ़दियां सुनदियां हुईयां भुल्लां बख्श लैणियां अगाह वास्ते समत बख्शिश करनी गरीब निवाज पढ़ी सुनी बाणी दा फल आदेश उस विछड़ी आत्मा नूं बख्शिश करदियां होयां सदीव काल वास्ते चरणा विच निवास बख्शना आवागमन दे गेड़ तो बचा के रखना मात लोक विच विचरदियां जाने अणजाने होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शनी पिछे समूह परिवार अते साख संबंधियां नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करना जी
ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗ ਔਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ, ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਪੈਜ ਪਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ

0: जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी सरदार सरबजीत सिंह जी सिद्धू तिनां दे अंतिम संस्कार अते अंतिम अरदास समागमां विच शामिल हो रहे हो, इत्थे ही हुण समाप्ति है जी। उन्हां दे परिवार वल्लों आईयां होईयां समूह संगतां रिश्तेदारां साख संबंधियां दा हार्दिक धन्नवाद है। कड़ा प्रसाद दी देग आप जी नूं बाहरों देग वाले काउंटर तों ही प्राप्त होवेगी। सो आप जीआं ने परिवार वल्लों बेनती है, गुरु घर दे लंगर हॉल विच लोड़ मुताबक जल पानी प्रशादा जरूर छक के जाणा जी। आप समूह संगतां दा फिर एक वारी धन्नवाद है। अगले समय दे वास्ते बेनती करां भाई जसप्रीत सिंह जी माणूकियां वालियां दे ढाडी ढाडी जथे नूं आप जी नूं गुर इतिहास ढाडी वारा राही निहाल करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु वाहिगुरु जी।

सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान, जब उदकरख

कहूं सिमट पयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार।

जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाई है, बाहुड़ दुख ना होई। रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त, तिन पे